0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आपने ना?
2: बहुत।
1: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: now opposed the loudspeaker crackdown. These rebels have now urged Shravendu Adhikari's government to roll back these curbs, questioning as to how Muslims will offer prayers with such a crackdown in place. The TMC rebels are now going to move the Calcutta High Court against the curbs, demanding a review of the loudspeaker restrictions. Important developments now coming to the fore from the state of West Bengal, where we're learning that after the loudspeaker crackdown, TMC rebels have opposed the loudspeaker crackdown. These restrictions that were in place that were brought upon by the Shravendu Adhikari government. My colleague Hrithik also now joins us on the broadcast to bring us the details. Hrithik, a crucial update coming to the fore where we're learning that the TMC rebels could now move the Calcutta High Court against the curbs of loudspeaker. They've even questioned as to how Muslims will offer prayers. Walk us through the details. What is happening in this state at this hour?
1: See, it has come day after Chief Minister Shubhendu Adhikari went on record stating that yes, the crackdown has begun, and particularly with regard to this religious places, in which include mosque and mandis, there are several crackdown on loudspeakers are going on. And after that, what we know yesterday, the rebel TMC faction, who is the leader of the opposition, they have said that Rituprata Banerjee has asked the CM Shubhendu Adhikari to rethink and roll back of the crackdown on the loudspeaker uses at the religious places. He went on record stating that loudspeaker ban is not there, so how the Muslims would offer prayers during Ramadan. And he said TMC rebel faction will move to High Court with regard to this case. So it's a very surprising move being taken. Absolutely. By the rebel faction, and who is the leader of the opposition in the state assembly. Back to you.
0: Right, absolutely, Hrithik. Thank you so much for joining us this morning and bringing us those details. Let's now take you to Jharkhand. Now, the Jharkhand exam row has entered a crucial phase after days of protests by the JPSC and the JSSC. As for instance, Ranchi, now the Hemant Soren government has opened a formal channel of dialogue. The first round of talks between the protesting students and the panel of four state ministers ended on a positive note. Both sides have described the meeting as constructive, with the government assuring that students' demands will be seriously considered. Now, even as talks begin, the probe is now intensifying. The Jharkhand CID has now summoned three JPSC members for questioning on Monday in connection with the recruitment controversy. Meanwhile, amid BJP criticism over Rahul Gandhi's absence from Ranchi, the Congress party has also now hit back, asking why every issue is expected to be taken up by the leader of opposition.
2: छात्रों के प्रतिनिधियों से जो सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई, उस मामले का कोई अभी फाइनल निष्कर्ष नहीं निकला है. हालांकि छात्रों का कहना है कि जो पूरी बातचीत हुई है सकारात्मक हुई है. उन्होंने अपनी मांग को काफ़ी मजबूती से रखा है, और जो मंत्रीगण थे उन्होंने भी उनकी बातों को ध्यान से सुना है. और उसके बाद उनका कहना था कि उनकी मांगें जायज लग रही हैं, लेकिन इसका जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री ही ले सकते हैं. तो मुख्यमंत्री के समक्ष वो गए हैं अपनी बातों को रखने के लिए. इनकी जो मुख्य मांगी थी उसमें जो 14वीं JPSC की परीक्षा थी उसे कैंसिल करना, और साथ में CBI इंक्वायरी की मांग करना. ये दो जो मुख्य मुद्दा है, ये उस पर छात्र जो है वो डटे हुए थे. और मंत्री का कहना है कि ये सारी बातों से मुख्यमंत्री को अवगत करा लिया जाएगा, और जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री लेंगे. तो फिलहाल अभी पहले राउंड की वार्ता हुई है, उसके बाद दूसरे राउंड का वार्ता इस पर जब होगा वो उसकी सूचना सरकार जो है वो स्टूडेंट्स को देगी, और उसके बाद इस पर दूसरे राउंड की वार्ता होगी. लेकिन अभी फिलहाल डेडलॉक बना हुआ है, और जो छात्रों ने घोषणा की है कि वो अपने कार्यक्रम को, यानी कि अपने जो प्रदर्शन है उसको जारी रखेंगे.
3: छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोगों ने तमाम वार्ता को किया, छात्रों की मांगों को हम लोगों ने समझा. सरकार सहानुभूतिपूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है.
4: पहला वार्ता था, बहुत ही सकारात्मक और परिवार जैसा लगा. सर लोग के, मैम लोग के साथ बैठकर बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई, और हमें विश्वास है कि हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं उस पर सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री जी जो है सो हमारी मांगों को जायज मांग मानेंगे.
5: बात हुई, हमारी डेलीगेशन गई. ये अच्छी बात है कि हर चीज राहुल गांधी करें, मोदी क्या करेगा, फिर अमित शाह क्या करेगा. सदन में नहीं आएंगे और राहुल गांधी घूमे, यहां भी जाए वहां भी.

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आजकल मसाला।
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: लॉन्च कंट्रोल।

0: And I think a lot of my politics and a lot of what politics should be in the country is about making people understand that our country is shunted and incomplete without the expression of women. Now, over that, certainly Kiran Rijiju has responded over this, and he has gone on to say that this seems to be a positive message from the Congress party, seems to be a change of heart, of Rahul Gandhi, and has gone on to say that it looks like that maybe now the Congress party will support women's reservation bill. Now, to get a response from the Congress party itself, I'm being joined with the Congress MP Sukhdeo Bhagat ji with us. Sir, Kiran Rijiju ka is par response aa gaya hai. Unhone kaha hai ki ye change of heart hai Rahul Gandhi ki taraf se, aur ab shayad Congress party women reservation bill ko support kare.
1: Main samajhta hu Kiran Rijiju ji ko jo sansadiya mantri hai उनको थोड़ा कांग्रेस के इतिहास पढ़ लेना चाहिए. स्वतंत्रता आंदोलन की बात करें तो हमने महिलाओं को कितना महिलाएं कितनी सक्रियता से भूमिका निभाई. अगर पॉलिटिकल फील्ड यहाँ की बात करें तो या तो आप प्रधानमंत्री के रूप में देख लें, मुख्यमंत्री के रूप में देख लें, तो ये कांग्रेस पार्टी शुरू से उनके साथ रही है. जहाँ तक वुमेन रिजर्वेशन बिल की बातें हैं, सरकार की मंशा आज भी, मोदी जी की मंशा आज भी साफ नहीं है. हम लोगों ने क्या कहा कि आप जब तक जितनी चीज़ें आपने सेंसस 11 के बाद हुआ नहीं है, तो आप कोई भी बिल ऐसा ना ले कि केवल बिल लाने के लिए बिल ना लें, उसका एक इम्पैक्ट, एक दूरगामी प्रभाव हो, उन चीज़ों को देखते हुए बिल लाने की बात है. अब राहुल जी का हृदय पहले भी साफ था, आज भी साफ है. बस किरण जी को हमारे ये इतिहास को जानना चाहिए और हमारे जो ये विचारधारा है उनको समझना होगा. लेकिन भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है. आज भी इनकी जो मातृ संगठन है आरएसएस में किसी महिलाओं को प्रवेश नहीं है. मैं किरण रिजिजू को यह बताना चाहता हूं.
0: लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि कांग्रेस पार्टी की नीयत साफ नहीं, अगर होती तो आज सपोर्ट होता.
1: मैं समझता हूं नीयत हमारी साफ है. वो नीयत जो प्रस्तुत कर रहे हैं वो नीयत में ही उनके खोट है.
0: So as you heard here, this is the response that is now coming from the Congress party, going on to say that this has been the politics of Congress party so far, but it is not so of the BJP is what they claim. Over to you.
2: All right, Rishika, thank you so much for joining us and bringing us that important reaction coming in from the Congress member parliament. We also have some fresh breaking news coming in at this hour. Let's take our viewers through it. But recent big breaking news coming in at the Sabo, where Devendranath Mahato has said that his team is going to hold dialogue at 10 a.m. In fact, Mahato has now gone on to issue a statement to say that the government should have accepted the demands earlier. He's even now gone on to add that the students will go to the circuit house for talks and all students have the same demands. He says that the number of students at talks does not matter. An important statement coming in. We're learning important breaking news coming in right over here, where we're learning that Devendranath Mahato has now issued a very crucial statement in which he's gone on to confirm that his team is going to hold a dialogue at 10 a.m. with the government. Let's also listen in to what he had to say.
3: उनके द्वारा तो सूचना मिला है कि आज 10 बजे सर्किट हाउस में वार्ता के लिए जाएंगे. हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था. सरकार देखिए जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, दो को जा रहा है, पांच को जा रहा है, दस को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है. दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए.
2: My colleague Prabhakar also now joins us on the broadcast from Ranchi. Prabhakar, an important statement we heard from the student leader who's now gone on to say that his team will now be conversing with the government at 10 a.m. Walk us through the details. What details do we have on the meeting?
4: See, the first round of meeting has already been done yesterday. We saw the meeting of one of the factions, of the main faction, I would say, of the students who are agitating out here. So they had a detailed meeting with the four ministers and the secretary over there at the state guest house. Now there is a second faction which is actually protesting in the same ground, the Devendra Mahato faction, and they are actually their representatives will be meeting the same set of ministers and the bureaucrat here. So basically government has invited both the factions. Now the details of the meeting which actually happened yesterday, they have put forth their demand. Their main demands are the cancellation of the 14th JPSC examination, the CBI inquiry into it, and a long long-term program, as long-term plan of the government to ensure that the examinations in Jharkhand goes error-free and can never be tampered. So these are the demands which have been put forth before the set of ministers, before the group of ministers. The group of ministers then actually went on to meet the chief minister, and he has been apprised of the situation. So the government now has to take a call as to what they will be doing about the demand which the students have made. One set of students, they met them yesterday. Today they are meeting at 10:30, the other set of students, and the government already knows their demand. Remember, on 10th of this month, the students have already announced a massive Vidhan Sabha Gherao protest, which can turn out to be a major mega event, and that would, the government would not like that protest rally to happen. So they would try and wrap this up, or they would try and kind of diffuse this entire protest much before it happens, much before the 10th.
2: All right, Prabhakar, thank you so much for joining us and sharing those crucial updates with us. Let's take you through more updates now coming in from Jharkhand. Now, the Jharkhand exam row has entered a crucial phase. After days of protests by the JPSC and the JSSC, aspirants in Ranchi, the Hemant Soren government has opened a formal channel of dialogue. Like my colleague Prabhakar was just mentioning, the first round of talks between protesting students and a panel of four state ministers has now ended on a positive note. Both sides, in fact, even described the meeting as constructive, with the government assuring the students that their demands will be seriously considered. Even as the talks begin, the probe is now intensifying. The Jharkhand CID has summoned as many as three JPSC members for questioning on Monday in connection with the recruitment controversy. Meanwhile, amid BJP criticism of Rahul Gandhi's absence from Ranchi, the Congress has now hit back, asking if every issue is expected to be taken up by the leader of opposition.
5: प्रतिनिधियों से जो सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई, उस मामले का कोई अभी फाइनल निष्कर्ष नहीं निकला है। हालांकि छात्रों का कहना है कि जो पूरी बातचीत हुई है सकारात्मक हुई है, उन्होंने अपनी मांग को काफ़ी मजबूती से रखा है, और जो मंत्रीगण थे उन्होंने भी उनकी बातों को ध्यान से सुना है, और उसके बाद उनका कहना था कि उनकी मांगे जायज लग रही हैं, लेकिन इसका जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री ही ले सकते हैं, तो मुख्यमंत्री के समक्ष वो गए हैं अपनी बातों को रखने के लिए। इनकी जो मुख्य मांगी थी उसमें जो 14वीं जेपीएससी की परीक्षा थी उसे कैंसिल करना, और साथ में सीबीआई इंक्वायरी की मांग करना, ये दो जो मुख्य मुद्दा है, ये उस पर छात्र जो है वो डटे हुए थे, और मंत्रियों का कहना है कि ये सारी बातों से मुख्यमंत्री को अवगत करा लिया जाएगा, और जो अंतिम निर्णय है वो मुख्यमंत्री लेंगे। तो फिलहाल अभी पहले राउंड की वार्ता हुई है, उसके बाद दूसरे राउंड का वार्ता इस पर जब होगा वो उसकी सूचना सरकार जो है वो स्टूडेंट्स को देगी, और उसके बाद इस पर दूसरे राउंड की वार्ता होगी। लेकिन अभी फिलहाल डेडलॉक बना हुआ है, और जो छात्रों ने घोषणा की है कि वो अपने कार्यक्रम को, यानी कि अपने जो प्रदर्शन है उसको जारी रखेंगे।
6: छात्रों के साथ सौहार्दपूर्ण माहौल में हम लोगों ने तमाम वार्ता को किया, छात्रों की मांगों को हम लोगों ने समझा, सरकार सहानुभूतिपूर्वक छात्रों की मांगों पर विचार करने को तत्पर है।
7: पहला वार्ता था, बहुत ही सकारात्मक और परिवार जैसा लगा, सर लोग के मैम लोग के साथ बैठकर बहुत ही सकारात्मक वार्ता हुई, और हमें विश्वास है कि हम लोग की जो भी जायज मांगे हैं उस पर सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तमाम मंत्री जी जो ऐसा हमारी मांगों को जायज मांग मानेंगे।
8: बात हुई, हमारी डेलीगेशन गई, ये अच्छी बात है कि हर चीज राहुल गांधी करें, मोदी क्या करेगा, फिर अमित शाह क्या करेगा? सदन में नहीं आएंगे और राहुल गांधी घूमे, यहां भी जाए वहां भी जाए, तो क्यों? इलेक्शन जीतने के बाद ये लोग यहां आते हैं, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बनते हैं, और सब काम राहुल गांधी करे। जवानों की बात राहुल गांधी उठाए, किसानों की बात राहुल गांधी उठाए, तो आप यहां क्या करने आए हैं? विदेशों में घूमने आए हैं?
9: वो झारखंड हो, वो प्रयागराज हो, वो कोटा हो, वो दिल्ली हो, राहुल जी के लिए हर छात्र महत्वपूर्ण है, कांग्रेस के लिए हर छात्र महत्वपूर्ण है, और राहुल गांधी जी हर छात्र की बात सुनेंगे।
2: Well, NDTV's managing editor Padmira Joshi has exclusively spoken to former Union Minister and BJP leader Smriti Irani. Let's listen in to what she had to say.
10: If you ask me as an Indian citizen, my opinion on how citizens congregated in Pune, how citizens who are young are congregating in Jharkhand, it is my right to show that opinion, to express that opinion and applaud the conduct of the students of Jharkhand. Why should not I applaud the conduct of the students that congregated in Pune, who were respectful of their country, who were respectful of their flag, who were respectful of uniform personnel? Why would you take away the respect that I express for fellow citizens and young citizens? Because why is my opinion only to matter if I compliment a particular subsection?
11: Because the
10: and not the other.
11: The insinuation seems to be that those

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा, सबका राजा आतुर मसाला।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: सेलिब्रेटिंग एक्सलेंस अक्रॉस जर्नलिज्म एंड इनोवेशन, NDTV स्टील्स द स्पॉटलाइट एट द 12th BCS रत्न अवार्ड्स 2025-26। Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.

0: नुकसान है। हर व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी में पता है कि राहुल गांधी सिर्फ ड्रामा करते हैं, राहुल गांधी की नीति और नियत एंटी यूथ है। एवरीबडी इन द कांग्रेस पार्टी नोज दैट राहुल गांधी'स कनेक्ट विद यूथ इज जीरो। इवन द कांग्रेस पार्टी एडमिट्स, कांग्रेस भी एडमिट कर रही है कि जेन जी राहुल के साथ में नहीं, जेन जी अगर किसी के साथ में कनेक्ट करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ में करते हैं, क्योंकि जेन जी की नीति और नियत पॉजिटिव है, नेशन फर्स्ट है, एंड द कांग्रेस पार्टी स्पिरिट इज नॉट प्रो नेशन।
1: शशि थरूर जी को ये मैं बताना चाहता हूँ, राहुल गांधी जी पिछले 2 सालों से लगातार छात्रों की जो मूलभूत समस्या है उनको उन्होंने उठा के रखा है, उन बातों को हमेशा छात्रों को भी जाके कह रहे हैं, और हम कोई कॉस्टली सॉफ्ट नहीं जिसमें फायदे और नुकसान की तरह राहुल गांधी ने मुद्दों को उठाया है। हम मैंने कहा कि वो चाहते एक व्यवस्था में परिवर्तन हो, शैक्षणिक वातावरण में परिवर्तन हो, इसलिए राहुल जी लगातार उन बातों को उठा रहे हैं, और ये हमने इसलिए कहा ना कि हम कोई राजनीतिक गेन के लिए हम इन बातों को नहीं उठा रहे हैं, हम छात्रों के भविष्य के लिए, उनका भविष्य संरक्षित हो, इसके लिए इन बातों को उठा रहे हैं। पूरे जो इतने कॉस्टली चीज़ें हो गई हैं, जिस प्रकार की चीज़ें शैक्षणिक व्यवस्था, उनके लिए राहुल जी इन बातों का आवाज़ उठा रहे हैं।
2: शशि थरूर साहब पुराने कांग्रेस के नेता हैं, समय पर नसीहत भी देते हैं, लेकिन उनकी नसीहत कुछ काम नहीं आती, क्योंकि राहुल गांधी जी अपने से ऊपर किसी को अच्छा पॉलिटिशियन या विद्वान नहीं मानते। कांग्रेस में भी अच्छे लोग हैं, लेकिन कांग्रेस राहुल गांधी और प्रियंका के नेतृत्व में, खड़गे साहब के नेतृत्व में जिस प्रकार से काम कर रही है, लोकसभा का मानसून सत्र पूरा केवल शोर शराबे के अंदर उन्होंने खराब कर दिया। राहुल गांधी जी को अभी युवाओं की नब्ज का पता नहीं है, उनको तो केवल ये लगता है कि कुछ जो आंदोलनकारी हैं, और उस आंदोलन के अंदर भी जिस प्रकार से अराजक लोगों ने उस पर कब्जा किया था, और वह भी अब देश और दिल्ली की जनता ने देखा है।
3: राहुल गांधी हैज टोटली फेल्ड एंड फ्लॉप्ड इन कनेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स एंड यूथ ऑफ आवर कंट्री, सो मच सो दैट इवन अ सीनियर कांग्रेस लीडर मिस्टर शशि थरूर हैज सेड राहुल गांधी हैज failed to resonate with the students of India and his programs have not created any impact. Look at the double-faced duplicity of Rahul Gandhi. Rahul Gandhi does not have any empathy and neither does he find time to go and meet students in Jharkhand who are on a hunger fast and some of them have even fainted. Yet today, Rahul Gandhi goes for his Chatron Ki Goonj program in Prayagraj. He finds time for that, a program which even his own party leaders, Congress party leaders, have said has failed miserably.
4: Let's take you through more updates coming in at this hour. Well, a huge face-off has now erupted between the Congress and the BJP, with the leader of opposition now receiving backlash coming in from the Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijiju. Well, Rahul Gandhi's remarks on women have triggered a political response from the Union Minister Kiran Rijiju. In a video shared by the Congress Party, Rahul Gandhi said that India cannot prosper without women's voices, arguing that women's energy remains trapped and must be allowed to express itself. He even said that India is incomplete without the expression of its women. Reacting to this very message, Kiran Rijiju called it a positive sign and said that there was a visible change of heart in Rahul Gandhi's approach towards women. Rijiju also urged the Congress to support the Women's Reservation Bill unconditionally.
5: Today, I got a question about women, which I answered. But then, since then, I've been thinking about it more deeply. And I was thinking to myself that the energy of India's women is trapped, is not allowed to express itself, is not allowed to imagine. And to me, no country can be successful if the women in that country are not expressing themselves, right? And I think a lot of my politics and a lot of what politics should be in this country is in making people understand, and not from a, you know, top-down perspective, but making people understand that

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाह मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आतुर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
5: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
6: Just few inches away is POK.
5: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: और शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: celebrating excellence across journalism and innovation. NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा,
3: सबका राजा आकर मसाला।
4: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
5: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना।
4: प्लीज। आप कहाँ से हैं?
5: हरियाणा।
4: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
4: आपकी फैमिली है?
5: और
4: बच्चे हैं?
5: 3 साल।
4: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
4: टाइम भी विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
4: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
6: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।

0: We are already underway. Expect hybrid powertrain, all-wheel drive, upright stance, and a premium cabin.
1: Now, if you have about 5 crore rupees lying in your bank and you're looking for a supercar, you can consider this one.
2: प्रोफेसर अभय करंदीकर, आईआईटी दिल्ली के डायरेक्टर प्रोफेसर रंगन बैनर्जी, सभी प्रोफेसर्स, अन्य महानुभाव और सभी स्टूडेंट साथियों, आज देश के आप सभी प्रतिभाशाली युवाओं के जीवन की नई यात्रा शुरू हो रही है। आप इस समय जीवन के एक यादगार मोमेंट को जी रहे हैं। उत्साह, उमंग, सपनों और भावनाओं से सराबोर इस मोमेंट का हिस्सा बनना। आईआईटी दिल्ली के इस कैंपस में आना, आपके साथ ये अनुभव शेयर करना मेरे लिए भी बहुत खास है। पिछली बार जब मैं कॉन्वोकेशन में शामिल हुआ था, तब पूरा देश कोविड के दौर से गुजर रहा था। तब मैं वर्चुअल माध्यम से जुड़ा था, लेकिन मैं आज आप सब युवाओं के बीच उपस्थित हूं और इसलिए मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। साथियों, आज जैसे आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है। क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहां से निकल रहे हैं। आज कई स्टूडेंट्स, उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एकाध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। आज आईआईटी दिल्ली में एआई से जुड़े कुछ नए इनिशिएटिव्स भी शुरू हुए हैं। मैं इसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज आप सभी और सारे स्टूडेंट्स इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, लेकिन मन के किसी कोने में कुछ और चल रहा होगा। मैं तो बाबा बागेश्वर नहीं हूं, लेकिन कुछ तो चलता होगा। हर स्टूडेंट के मन में आने वाले कल की अपनी अपनी तस्वीर होगी। कई छात्र अपनी पहली सैलरी का इंतजार कर रहे होंगे, कोई नए शहर में नई शुरुआत की तैयारी में होगा, कई साथी

अपने पहले स्टार्टअप का सपना देख रहे होंगे, किसी ने अगले कॉम्पिटेटिव एग्जाम का लक्ष्य बनाया होगा। हर किसी का रास्ता अलग है, हर किसी का सपना अलग है, लेकिन इन सब के बाद भी एक एहसास ऐसा है जो आप सभी के मन में एक सा होगा। वो दिन याद करिए जब आपका आईआईटी दिल्ली में पहला दिन था और एक ये आज का दिन है। आप सोच रहे होंगे कि अभी कल की भी तो बात है जब ओरिएंटेशन हुआ था, और अब ये कॉन्वोकेशन का समय भी आ गया, तो ओरिएंटेशन से कॉन्वोकेशन की इस यात्रा का आपको भरपूर सेटिस्फेक्शन भी होगा, और साथ ही आप सभी में जीवन के एक नए चैप्टर की शुरुआत का उत्साह भी होगा। और इसलिए मैं तो यही कहूंगा, आज के इस पल को पूरी तरह जी लीजिए। आने वाले समय में जब आप पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होगी, तब यहां की पुरानी यादें आपको पुराने दिनों में जरूर ले जाएंगे। ये आपको एनर्जाइज भी करेंगी। हर हॉस्टल के साथ आपकी मेमोरीज कुमाऊं, आरा, कारा, विंडी, नील, कैलाश, हिमाद्री, इंटर हॉस्टल कंपटीशन के किस्से, पुरानी नोकझोंक, ऐसा कितना कुछ होगा जो विदा होने से पहले एक बार फिर आप जरूर याद करिए। और दोस्तों, बात सिर्फ पढ़ाई की नहीं है, ये भी हो सकता

अभी समय तो हो गया है, सतपुरा मैस के पराठे याद आ रहे हो? आप में से कई साथी विंड टी पर भी कुछ और पल भी बिताना चाहते होंगे, और विंड टी पर जाए तो मुझे भी याद करना। कोई अपने डिपार्टमेंट में एक बार फिर जाना चाहेगा, कोई अपने पसंदीदा अड्डे पर कुछ देर और बैठना चाहेगा। और साथियों, इन भावुक पलों में मैं एक बात आपसे जरूर कहूंगा, जब जब जीवन आपको पीछे मुड़कर देखने का अवसर देगा तो ये कैंपस लाइफ, आपके दोस्त, टीचर्स, मेंटर्स और सपोर्ट स्टाफ जो आपका परिवार बन गए, आपके प्रोफेसर्स जिन्होंने आप जैसी प्रतिभाओं को गढ़ने की जिम्मेदारी उठाई, और आपका ये इंस्टीट्यूट जो धीरे धीरे आपका अपना घर बन गया, आप अपनी हर सक्सेस में इन सब को याद करेंगे। इन सब के लिए थैंकफुल होंगे, और इसलिए इन्हें एक एसेट के तौर पर यहां से लेकर के निकलना भूल मत जाना, छोड़ मत जाना, साथ ले जाना। मेरा सुझाव होगा कि जाते जाते यहां के हर सदस्य मिलकर के जाइए, और आप कहीं भी रहे कोशिश करिएगा ये रिश्ता हमेशा हमेशा ताजा बना रहे। साथियों, आज आप ऐसे समय में इस इंस्टीट्यूट से निकल रहे हैं जब दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आज दुनिया की स्ट्रेटेजिक इक्वेशन बहुत तेजी से बदल रही है, ग्लोबल पावर बैलेंस भी प्रतिपल बदल रहा है, और इसके पीछे सबसे बड़ी फोर्स है टेक्नोलॉजी की स्पीड। आज कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि अगले 20-30 वर्षों की दुनिया कैसी होगी, लेकिन साथियों, जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो IIT दिल्ली से सीखा है। आखिर आपकी ये डिग्री क्या कहती है? क्या सिर्फ इस बात का प्रमाण है कि आपने एग्जाम पास किया, अच्छा CGPA हासिल किया,
या एक अच्छा प्लेसमेंट हासिल किया। निश्चित रूप से इन सब का अपना महत्व है, लेकिन मुझे लगता है आपकी डिग्री दुनिया को यह बताती है कि आप कठिन समस्याओं का समाधान करना जानते हैं। आप अपने आईआईटी दिल्ली के सफर को याद कीजिए, यहां तक पहुंचना आसान नहीं था, यहां की पढ़ाई भी आसान नहीं थी, लेकिन आपने हार नहीं मानी। ये डिग्री आपको एक दिन में नहीं मिली, एक एक विषय, एक एक प्रोजेक्ट, मिड सेम, इन्हीं छोटे छोटे कदमों ने आपको यहां तक पहुंचाया है। जीवन भी इसी सिद्धांत पर चलता है। जब कभी कोई चुनौती बहुत बड़ी लगे तो उसे घबराइए मत, उसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए। आपने खुद देखा है कैसे लैब में कोई प्रॉब्लम डेड एंड तक यानी लगने लगती थी, सिमुलेशन में सॉल्यूशन खोजने में घंटे या दिन निकल जाते थे, लेकिन फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व भी की और कुछ नया लेकर भी आए। इसी तरह लाइफ में भी मुश्किलें आएगी, लेकिन मुश्किलों का स्वभाव होता है वो अकेले नहीं आती है। मुश्किल जब आती है ना तो साथ साथ मौके भी लेकर आती है। सबको बस अलर्ट रहना है, सतर्क रहना है। इस संस्थान ने जो सिखाया है उसे बार बार याद रखना है। साथियों, मैं लाइफ की कुछ प्रैक्टिकल बातें भी आपसे शेयर करना चाहता हूं। कैंपस का जीवन और कैंपस के बाहर का जीवन, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। आईआईटी की परीक्षा में सिलेबस होता है, लेकिन जिंदगी की परीक्षा में सब कुछ आउट ऑफ सिलेबस होता है। आप याद करिए, कैंपस लाइफ में सारे फंडे क्लियर होते थे, क्या पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट पूरा करना है, कौन सी परीक्षा देनी है, सब पहले से तय होता था। लेकिन जिंदगी कुछ अलग तरह से चलती है। वहां न कोई तय कोर्स होता है, न कोई क्वेश्चन पेपर होता है। कई बार तो ये भी कोई नहीं बताता कि असली सवाल क्या था। वो सवाल भी आपको खुद पहचानना पड़ता है। मैंने आईआईटी के अनेक अलमनाई की यात्रा को देखा है। उनकी सक्सेस का कारण सिर्फ ये नहीं था कि उन्होंने सही जवाब दिए, उनकी सक्सेस का कारण ये था कि उन्होंने
वो सवाल पहचाने जिन्हें दुनिया ने सवाल मानना ही छोड़ दिया था। उन्होंने उन समस्याओं का समाधान खोजा जिनके साथ बाकी लोग समझौते कर चुके थे। और इसलिए लाइफ में क्यूरियोसिटी बनाए रखिए, अपनी लर्निंग इंस्टिंक्ट को जलाए रखिए, जगाए रखिए, चेतना बनाए रखिए। जो बातें बिना सोचे समझे स्वीकार कर ली जाती हैं, जरा उन्हें परखिए, उन पर सवाल उठाइए। लेकिन सिर्फ सवाल पूछकर मत रुकिए, उनका समाधान खोजने का साहस भी रखिए। यही सोच आपकी अलग पहचान बनाए।

जब उस पीढ़ी के सामने सिर्फ एक ही लक्ष्य था, भारत की आजादी, उसके लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया, लंबा स्ट्रगल किया। आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, इसके पीछे उस पीढ़ी का तप, त्याग और बलिदान है। और साथियों, आज के इस दौर में हमारे सामने चुनौतियां भी अलग है और इसलिए हमारे दायित्व भी अलग है। अपने जीवन के अगले 30-35 साल में आप जो कुछ भी करेंगे, वो विकसित भारत की हमारी यात्रा को प्रभावित करेगा। इसलिए आपके हर निर्णय का आधार ये भी होना चाहिए कि इसे देश को क्या फायदा होगा, इसे देश की कौन सी जरूरत पूरी होगी। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना सशक्त होगा, उतना ही देश सशक्त होगा। इसी सोच के साथ हमने कई ऐसे सेक्टर्स ओपन किए हैं जहां युवाओं के लिए एंट्री ही एक तरह से बंद हुआ करती थी। सरकार की आधुनिक नीतियों की वजह से आज देश में युवाओं के लिए नए नए सेक्टर्स भी बन रहे हैं। साथियों, पिछली बार जब मैं आपके सीनियर्स के कॉन्वोकेशन से वर्चुअली जुड़ने का मुझे अवसर मिला था, तब मैंने युवाओं के लिए स्पेस सेक्टर में हो रहे रिफॉर्म्स की चर्चा की थी। तब तक इस सेक्टर में लगभग पूरा काम सरकार ही करती थी, लेकिन आज वही स्पेस सेक्टर हजारों युवाओं के लिए नए अवसरों का आकाश बन चुका है। आज हमारे युवा अपने लॉन्च व्हीकल्स बना रहे हैं, रॉकेट लॉन्च कर रहे हैं और ऐसी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं जो दुनिया के गिने चुने देश ही हासिल कर पाए हैं। मुझे विश्वास है आज कहीं न कहीं देश का कोई युवा इंजीनियर गर्व से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू बिल्ड अ रॉकेट। सेमीकंडक्टर सेक्टर का उदाहरण भी हमारे सामने है। जब हमने इस दिशा में कदम बढ़ाया तो कुछ लोगों ने सवाल उठाए, कहा गया भारत ये नहीं कर पाएगा, लेकिन आज पहली सेमीकंडक्टर यूनिट्स में प्रोडक्शन शुरू हो चुका है। और मैं साफ मानता हूं, चिप से लेकर के शिप तक सब कुछ यहीं पर आप ही के हाथों से बनेगा।

और कहीं कोई युवा पूरे आत्मविश्वास से कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ चिप इन इंडिया। साथियों, आज आप हमारे ड्रोन सेक्टर को भी देखिए। आज इस सेक्टर में युवा नई नई संभावनाएं तैयार कर रहे हैं। कहीं ड्रोन से खेतों में काम दिया जा रहा है, ड्रोन दवाइयां पहुंचा रहा है, ड्रोन देश की रक्षा सुरक्षा में मदद कर रहा है। और आज कहीं कोई युवा कह रहा है, फर्स्ट इन माय ब्लड लाइन टू मेक अ ड्रोन। साथियों, भारत के स्टार्टअप रिवॉल्यूशन को इसी पीढ़ी के आप जैसे युवाओं ने ही तराशा भी है, ताकत भी दी है। इसी इंस्टीट्यूट से कितने ही फाउंडर्स निकले हैं। अगर एक इंस्टीट्यूट से इतना कुछ हो सकता है, तो सोचिए पूरे देश में कितनी बड़ी ताकत तैयार हो रही है। यूनिकॉर्न्स, डिजिटल पेमेंट्स, फिनटेक रिवॉल्यूशन, इन सभी ने देश के लाखों युवाओं को पहली बार कुछ नया करने का अवसर दिया है। साथियों, अभी ऐसे भी अनेक सेक्टर्स हैं जहां भारत अपनी नई यात्रा शुरू कर रहा है और बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी उम्मीदों के साथ देश आप जैसे युवाओं की ओर देख रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स, क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी एक्सप्लोरेशन, बैटरीज, पावर शॉर्टेज, एनर्जी सिक्योरिटी, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ऐसे अनेक क्षेत्र आपके टैलेंट, आपके इनोवेशन और आपकी लीडरशिप का इंतजार कर रहे हैं और मैं भी इंतजार कर रहा हूं। साथियों, अब एक और बड़ी संभावना आप सबके सामने है और वो नया अवसर है रिसर्च। आज देश को नई नई रिसर्च की बहुत जरूरत है और रिसर्च पर हमारा उतना ही फोकस भी है। प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप हमारे प्रतिभाशाली युवाओं को रिसर्च करने का अवसर दे रही है, आइडियाज को आगे बढ़ाने का मौका मिले। इसके लिए रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन स्कीम शुरू की गई है। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना भी हुई है ताकि देश में साइंस और रिसर्च को नई ताकत मिल सके। रिसर्च सेक्टर में 1,00,000 करोड़ रुपए तक की फंडिंग की व्यवस्था की जा रही है। अंग्रेजी में बोलूं, 1,00,000 करोड़, ये आपके लिए बता रहा हूं। इसी तरह साथियों, एकेडमिक रिसोर्सेज के एक्सेस को भी आसान बनाया गया है। वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के माध्यम से आज दुनिया की प्रतिष्ठित रिसर्च जर्नल्स देश के छोटे से छोटे शहर में बिना किसी अतिरिक्त लागत के पहुंच रही है। साथियों, मुझे पता है अभी इस दिशा में हमें लंबी दूरी तय करनी है और ये काम रिसर्च को लेकर आप सबके कमिटमेंट से ही हो सकता है। इसके लिए देश को आपसे अपेक्षा भी है और सबसे बड़ी बात आप पर भरोसा भी है।
साथियों, अब मैं आपसे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन की बात करूंगा। जब हम बड़े गोल्स को अचीव करने के लिए प्रारंभ करते हैं, निकलते हैं, तो एक बड़ा डिस्ट्रैक्शन भी हमारे सामने आता है। ये डिस्ट्रैक्शन होता है एक दूसरे से कंपैरिजन का, किसी को क्या पैकेज मिला, कौन किस कंपनी में गया, किस शहर में गया, किस देश में गया, किसने स्टार्टअप शुरू किया। आज के सोशल मीडिया के दौर में ये तुलना कभी खत्म नहीं होती। लेकिन याद रखिए, जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है। आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा, साथ ही अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। साथियों, मैं सभी स्टूडेंट्स को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देता हूं। आपके माता पिता को, परिवारजनों को विशेष बधाई देता हूं। आपके शिक्षकों को और उन सभी लोगों को भी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं जो इस पूरी यात्रा में हर कदम पर आपके साथ खड़े रहे हैं। आप सभी का भविष्य उज्जवल हो, आप निरंतर नई ऊंचाइयों को छुए, इसी मंगल कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
5: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
4: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
6: Front lines of Kargil, the fury of Operation Sindoor,
7: so many attacks,
6: the chaos and cries of disaster zones, to fighter jet cockpits, and the world's most defining interviews.
7: It's incredible.
6: He has seen history break live, unfiltered. 20,000 hours of live broadcasting.
7: Welcome to Left, Right, and Center.
6: Hard facts.
7: War struck country.
6: Hard questions.
7: In the Ukraine.
6: 30 years of trust.
8: In the Kargil area.
7: North Ukraine. In France. In Italy.
8: At Srinagar.
7: I am Iskandar.
9: Vishnu Shom for NDTV.
6: Vishnu Shom. Only on NDTV.

0: सपने लेकर के यहां से निकल रहे हैं। आज कई स्टूडेंट्स, उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एकाध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। जब जब बदलाव का दौर आता है, तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। जिंदगी कोई लीडर बोर्ड नहीं है, आपकी असली दौड़ किसी और से नहीं, खुद अपने आप से है। हर दिन कल से बेहतर बनने की कोशिश करते रहिएगा, साथ ही अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना सशक्त होगा, उतना ही देश सशक्त होगा।
1: टुडे मोर देन 4.5 करोड़ स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन। सिंस 2014, number of universities increase nearly by 70%. More than 650 new universities, 14,000 new colleges, over 4,000 new ITIs, 9 new IIMs, 7 new IITs, and 13 new AIIMS have been established. Medical college have more than doubled and the medical seats have almost tripled. Today nearly 1.4 lakh medical seats are available across 823 medical colleges in the country.
2: Joining me live on the broadcast is my colleague Aishwarya. Aishwarya, this certainly is seen as not just another address at a convocation ceremony, but also as an outreach of the government, specifically the Prime Minister, to Gen Z, especially at times when the voices of Gen Z really matter, keeping in mind also that the 2029 elections are approaching and nearly 30% of the voting group will be the Gen Z.
3: Well, that's right. And that's the outreach of Prime Minister Narendra Modi as far as the agencies of the country are concerned. Prime Minister

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
2: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
2: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
2: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
3: 3 साल।
2: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
2: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: श्रीनगर तक अलाउड।
2: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
1: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
0: The gift city in Gujarat stands at the heart of India's global ambition and Prime Minister Narendra Modi's vision to connect India's growth with global capital. How far has the idea progressed and what remains to be done? Finance and policy leaders weigh the challenges and map the road ahead. HSBC, a pioneer at Gift City, and NDTV present Global Connect, only on NDTV.
4: And this is People's Sansad between Jantar Mantar and Jharkhand. Is the distance so large?
5: When we went there, my young colleagues went there. For that, when people are sitting in Dharna,
4: serious is the question. You're saying they're sensitive?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा। सबका
3: राजा आकर मसाला।
4: The Gift City in Gujarat stands at the heart of India's global ambition and Prime Minister Narendra Modi's vision to connect India's growth with global capital. How far has the idea progressed and what remains to be done? Finance and policy leaders weigh the challenges and map the road ahead. HSBC, a pioneer at Gift City, and NDTV present Global Connect, only on NDTV.
5: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
6: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना।
5: आप कहाँ से हैं?
6: हरियाणा। कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
5: डेढ़ महीने पे।
6: आपकी फैमिली है?
5: कौन?
6: बच्चे हैं? 3 साल। मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
5: बहुत।
6: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
5: श्रीनगर तक अलाउड।
6: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
5: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।

0: well system used to be very nice. Divert all the rain water into the well and let it all percolate into the ground. So this is what we had been working. स्पंज गार्डन, जैसे मैं आपको पहले भी बता रहा था, स्पंज गार्डन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इन एंटायर सिटी. हम लोग 10 स्पंज गार्डन इमीडिएटली मुंबई में इंस्टॉल करना चाहते हैं.
1: शुभाजीत्स रेसिपी फॉर मुंबई इज हाइली लोकलाइज्ड. यू माइट हैव हर्ड ऑफ द मिवाकी फॉरेस्ट टेक्निक फ्रॉम जापान, बट ब्रिंगिंग बैक ग्रीनरी टू आवर स्पेसिफिक क्लाइमेट रिक्वायर्स अ डिफरेंट फॉर्मूला. दिस लोकलाइज्ड अप्रोच इज शोइंग रियल tangible results in communities across Maharashtra.
2: Firstly, I am from Royal College and as a Green Club, I am from Green Club as a Vice President of the Green Club at Royal College. जैसा सर ने आप बताया, currently सब waste water वाले system के बारे में, जैसे sponge garden के बारे में जो बताया, काफ़ी initiative ले रहे हैं water के related, save करने के लिए काफ़ी अच्छा, मतलब जो अलग अलग डिफरेंट मेथड है यूज़ करे जा रहे वाटर्स को हार्वेस्ट करने के लिए, काफ़ी अच्छा मतलब बताया है सर ने उसके बारे में. स्पॉन्ज गार्डन का मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इंटरेस्ट आया मुझे भी काफ़ी कि ये इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हम, क्योंकि इससे मल्टीपल टास्क एक टाइम पे मल्टीपल टास्क हो रहे, तो काफ़ी अच्छा लगा इनिशिएटिव एंड वो आइडिया बहुत क्रिएटिव है और अच्छा आइडिया है मेरे हिसाब से.
3: करेंगे अपने,
2: हाँ करेंगे जरूर.
3: क्या मेथड है स्पॉन्ज गार्डन का, क्या है
2: मतलब बेसिक मेथड, मतलब एरिया रिक्वायर्ड रहता है, जैसे कि आपने बताया कि वो इम्प्लीमेंट करने पे हमें वो जो वो हैवी रेन्स होता है उससे भी एक तो वो बचाएगा एंड डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स से और भी सर ने बताए, तो सर ने जो एक्सप्लेन किया काफ़ी अच्छा एक्सप्लेन किया है, मतलब सब समझा है, एट द एंड देखेंगे एंड इम्प्लीमेंट करेंगे.
4: दे आर सफरिंग फ्रॉम स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, सो वी कैन टेक स्टेप्स टू सेव दैट वाटर. Especially the water which are coming from rain, we can use it. जो पानी already हमारे पास आ रहा है, हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं वहाँ पर पानी ऐसे भर जाता है, नाले भर जाते हैं, वो पानी कोई यूज़ में नहीं आता, वो पानी वेस्ट हो जाता है. बट वी कैन यूज़ दैट वाटर, और पानी का शॉर्टेज है, तो जो जैसा कि सर ने हमें बताया, हम स्पॉन्ज गार्डन और फिर पॉकेट गार्डन और रूट बूस्टर का इस्तेमाल करके हम पानी जो है ग्राउंड में बहुत लार्ज अमाउंट में जमा कर सकते हैं, और फिल्टरेशन के लिए भी एक अलग से स्पेशल क्लोथ है, दैट्स व्हाई वी कैन यूज़ अ क्लीन वाटर. और जैसा कि हम जानते हैं बीएमसी हमें जो है क्लीन वाटर प्रोवाइड करता है, एंड दैट वाटर आर मोस्टली आर यूजिंग इन फ्लश, 40% ऑफ वाटर आर गेटिंग वेस्टेड इन दैट. सो हम उन वाटर को फ्लश में ना यूज़ करके जो वाटर हम सेव कर रहे हैं उनको यूज़ करें. सो उससे क्या होगा, जो बीएमसी के थ्रू हमें पानी मिल रहा है वो बच सकता है, 40% वाटर जो है हम बचा सकते हैं, और जो वाटर हमने प्रिजर्व किया है वो हम यूज कर सकते हैं. आपको लग रहा है कि
5: यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एक पहाड़ी एरिया पे मैं रहता था, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा वाटर शॉर्टेज है और हर साल ग्राउंड वाटर जो है वो कम होते जा रहा है, और इसके चलते मैंने एक कुछ अपने को रिसोर्सेस करना पड़ेगा, इसके लिए सुभरजीत मुखर्जी फाउंडेशन के साथ मैंने जोड़ा और वो सब देखा एक्टिविटीज़, बिकॉज रत्नागिरी चिपलून ये जो अपना जो वहाँ का जो लैंड स्ट्रक्चर है उसके लैंड के नीचे 4 फीट के नीचे बेसॉल्ट है और वहाँ पे पानी जाना बहुत मुश्किल है, तो बहुत सारे ड्राई बोरवेल्स है जो उनका जो लेंथ है वो 250 फीट, 300 फीट, 600 फीट तक गया हुआ है और वाटर लेवल ऑलरेडी कम है, तो हमने पिछले साल उनका जो मॉडल लिया और उसका जो हमने स्टडी किया और उन्होंने उनको जो हमको हेल्प की उसके बारे में हमने 31 बोरवेल रिचार्ज किया उनके साथ मिलके, और आज हमने देखा है कि वो 250 फीट ज़मीन के नीचे अंदर पानी पूरा रेन का पानी जा रहा है, तो उसका स्टोरेज 1 CR से ज़्यादा है ज़मीन के अंदर.
0: See, the most important situation right now is we depend upon groundwater a lot and 70% of the groundwater is already finished. We have taken it out. Our extraction rate is much more than the natural percolation of rainwater. So if the water takes 3 years, 4 years to percolate, but we are taking out so fast that there is no water left. So it's very important that the very system we are using as a borewell to take out water from the ground, we want to recharge it again instantly. Like our rooftop water should be immediately connected to the borewell and let it go into the ground. Because if it's like a bank account, we are only withdrawing money and we are not depositing it. Just imagine you have a bank account which your forefathers have deposited money and you are right now you are only withdrawing. so obviously it's going to be over.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आपने ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी, एवरीडे।
4: सेलिब्रेटिंग एक्सलेंस अक्रॉस जर्नलिज्म एंड इनोवेशन, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.

0: TOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज TOK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
2: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।

0: इनका जेपीएससी जेएसएससी को लेकर के प्रोटेस्ट था कि इसमें जो भी अनियमितता हो रही है उसको लेकर के पीसफुल डिमांड था। देखिए ठीक,
1: लेकिन ये पीसफुल तो रह नहीं रहा है, जिस तरह से सीएम हाउस की ओर मार्च करने की कोशिश कर रहे हैं।
0: पीसफुल ही है, पीसफुल है, इसमें थोड़ा बहुत तो एग्रेशन होगा ही, बट ऑलमोस्ट पीसफुल है, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं है।
2: सरकार के साथ हर हिंदू हम लोगों ने किया था और सरकार के साथ
3: कैसे नहीं आएगा,
2: चर्चाएं भी है, उन्होंने सारा नोट डाउन किया और उन्होंने आश्वासन दिया सब में हम लोग चर्चा करेंगे और इन सबको माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में डालेंगे और ये जल्द से जल्द इसका निष्पादन करेंगे।
4: इनके द्वारा तो सूचना मिला है कि आज 10 बजे सर्किट हाउस में वार्ता के लिए जाएंगे। हमने तो कहा था कि बाकी जो छात्र गए थे और सरकार मान जाती तो और जाने की आवश्यकता नहीं था। सरकार देखिए जो जाने का कौन जा रहा है, नहीं जा रहा है, 2 को जा रहा है, 5 को जा रहा है, 10 को जा रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। दोनों का मांग सेम है, मांग पूरी होना चाहिए।
5: आज छात्रों के विभिन्न समूहों से, स्टेक होल्डर से यह प्रतिनिधिमंडल मिलता रहेगा। आज जैसे हम लोग एक छात्र समूह से मिले, अभी एनएससीआई के लोग हैं, जेसीएम के लोग हैं, एसीएस के लोग हैं, ये तमाम से हम लोग मिलेंगे। अलावे एक मेल आईडी हम लोग जारी कर रहे हैं, jpsc.jssc.feedback@gmail.com। इस पर कोई भी छात्र, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टेक होल्डर सुझाव दे सकता है और हम लोग तमाम लोगों के सुझाव के अनुरूप एक रिफॉर्म की नीति और एक सामूहिक निर्णय करने का विचार रखते हैं।
6: बच्चों से बहुत सकारात्मक बात आई, जो उनके डिमांड्स हैं वो पब्लिक डोमेन में है और हम लोगों ने भी उसको बहुत विस्तार से उनकी सारी बातों को सुना समझा। मुझे अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो बच्चे आए थे वार्ता के लिए बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड थे और थॉरो थे। जो इशू है वो इशू सिर्फ आज झारखंड का नहीं है, पूरे देश का ये मामला है, तो सारे तथ्यों के साथ आए थे। हम लोगों ने उसको सारा कुछ कलेक्ट किया, उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ भी जाना हुआ, वहाँ बात हुई हम लोगों की और कुछ चीज़ों पर वो आज लिखित हम लोगों को अपना पक्ष देने वाले हैं, हम लोग उसका इंतज़ार कर रहे हैं।
7: 10 तारीख का उन्होंने डेडलाइन भी दिया है, 10 तारीख को बोल रहे हैं कि वो विधानसभा घेरेंगे, तो आपको लगता है कि 10 से पहले आपको करना
6: है? उन्होंने हमें कोई डेडलाइन नहीं दिया है और कोई आंदोलन लोकतांत्रिक तरीके से जिस भी प्रक्रिया से गुजरती है राज्य सरकार को उससे कोई परेशानी नहीं। आप देख रहे होंगे वहाँ बच्चे आराम से बैठकर अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अनलाइक जंतर मंतर जहाँ भाजपा ने पैलेट गन और आंसू गैस और ब्रूटली बच्चों को मारा है, महिला बच्चियों के साथ गलत तरीके से बिहेव किया, तो ये तमाम बातें हैं। लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करना उनका अधिकार है।
8: Alright, with that, it's time for us to slip into a very quick commercial break. Don't go anywhere. News and update continue on the other side.

0: रंगीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
3: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
4: Really?
3: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: Welcome back. Thank you for staying with NDTV. We're getting in breaking news where we learn that an 18-year-old has been swept away in an open drain, and this happened in the national capital. The 18-year-old fell into the drain amid heavy rainfall. The NDRF, the divers have conducted a search operation for the missing youth. The residents have flagged unbarricading of the drain nearby, and the locals claim that there was an open drain issue that was raised multiple times with the authority. My colleague Anushka has spoken with the victim's father. Let's listen in.
1: ये कब की घटना है और किस तरीके से हुआ, ऐसा कैसे हुआ कि उनका पैर?
2: घटना है करीब 8 बजे की, कल 8 बजे से आ रहे थे, 62 से सेक्टर 62 नोएडा से आ रहे थे, तो बोले पापा मैंने फ़ोन किया कि मैं यहाँ आ चुका हूँ, उसके बाद पता नहीं चला ये पुलिया से निकले हैं और पैर फिसल गया है और बैग मिला है, बैग फेंक दिया, फिर अपने पास निकलने की कोशिश की, फिर बच्चा नहीं मिला कल 8 बजे से।
1: कितने घंटों से ये सर्च ऑपरेशन चल रहा है, किस तरीके से अथॉरिटीज को बताया गया?
2: ये मैंने कंप्लेंट की है तो 10-11 बजे कल छानबीन हुई, थोड़ी बहुत चले गए, फिर गोता वाले 11 बजे लमसम में आए हैं, कंप्लेंट जब इधर उधर की तब उसके बाद अच्छा करीब 22 घंटे बाद छानबीन चालू हुई है, कल के बाद
1: 22 घंटे के बाद लोग यहाँ पर ढूंढने के लिए पहुँचे।
2: हाँ 22 घंटे के बाद।
1: कहाँ काम कर रहे थे?
2: 62 में, सेक्टर 62 में। हाँ
1: किस चीज़ का काम करते थे?
2: एंट्री रूम में करते थे, ऑफिस में। हाँ ऑफिस में काम करते थे। अब मेरा यही मांग है कि मेरा बेटा कैसे भी मिल जाए, जैसा भी शरीर उसका मिल जाए, बस मेरा यही सरकार से मांग है।
0: Time fast to slip into another quick commercial break. Don't go anywhere. News and update continue.
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा क्या स्वाद है।
3: अरे मेरे राजा,
5: सबका राजा आकर मसाला।
6: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
7: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
6: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?
8: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
3: द गिफ्ट सिटी इन गुजरात stands at the heart of India's global ambition and Prime Minister Narendra Modi's vision to connect India's growth with global capital. How far has the idea progressed and what remains to be done? Finance and policy leaders weigh the challenges and map the road ahead. HSBC, a pioneer at Gift City, and NDTV present Global Connect, only on NDTV.
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.
5: Straight from the heart of the newsroom to the core of the stories shaping your world. Join me, Gargi Rao, as I track all the developments as they break. Live from the NDTV newsroom, weekdays at 4 p.m.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: और
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल यू नो।
3: द गिफ्ट सिटी इन गुजरात स्टैंड्स एट द हार्ट ऑफ इंडियाज ग्लोबल एंबिशन एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीज विजन टू कनेक्ट इंडियाज ग्रोथ विद ग्लोबल कैपिटल। How far has the idea progressed and what remains to be done? Finance and policy leaders weigh the challenges and map the road ahead. HSBC, a pioneer at Gift City, and NDTV present Global Connect, only on NDTV.
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind. I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूं? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाह मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: और शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: दिस इज पीपल्स संसद बिटवीन जंतर मंतर एंड झारखंड। इज द डिस्टेंस सो लार्ज?
2: व्हेन वी वेंट देयर, माय यंग कॉलीग्स वेंट देयर, सो दैट व्हेन पीपल आर सिटिंग इन धरना।
3: Celebrating excellence across journalism and innovation, NDTV steals the spotlight at the 12th BCS Ratna Awards 2025-26. Best English News Channel of the Year, NDTV 24/7. Best News App of the Year, NDTV. Best Election Coverage of the Year, West Bengal Election Coverage. Best Podcast Show of the Year, NDTV Control All Defense. Best Primetime Anchor of the Year, Sayed Suhail. Best Female Anchor of the Year, Vasudha Venugopal. Best On-Ground Coverage of the Year, Operation Sindoor Coverage. NDTV, the Network of Impact.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा, सबका राजा आकर मसाला।
4: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
3: देश का टायर जेके टायर।
4: डॉक्टर रोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है
5: कुछ इससे भी अनोखा।
4: कमला पसंद सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
6: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
7: वाओ मामा क्या स्वाद है।
8: अरे मेरे राजा,
9: सबका राजा आकर मसाला।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: बड़े बड़े इम्तिहानों से गुजरता है, वक्त तराशता है जिसे, तो जाने क्या क्या ना करता है। जब तक खुशबू सबसे बेहतरीन न बन जाए, आराम के लिए नहीं ठहरता है। जब तक लाजवाब न बन जाए, उसे नहीं इत्मीनान है। तभी तो रिचमंड बनना नहीं आसान है।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा, सबका
4: राजा आतुर मसाला।
5: जानते हैं, मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, or 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: और शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: देश का टायर, जेके टायर।
1: ऑक्टोरोमा मैनुअल वाइंडिंग, चार लोगों के पास है।
2: कुछ इससे भी अनोखा
1: कमला पसंद, सिर्फ एक अनोखा स्वाद, कमला पसंद पान मसाला।
3: थोड़े में ज्यादा स्वाद, ये हिट तो है इसकी खास बात।
4: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
5: अरे मेरे राजा,
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: नमकीन चाहे जैसे खाओ 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
1: सेलिब्रेटिंग एक्सलेंस अक्रॉस जर्नलिज्म एंड इनोवेशन NDTV स्टील्स द स्पॉटलाइट एट द 12th BCS रत्न अवार्ड्स 2025-26 बेस्ट इंग्लिश न्यूज चैनल ऑफ द ईयर NDTV 24/7 बेस्ट न्यूज ऐप ऑफ द ईयर NDTV बेस्ट इलेक्शन कवरेज ऑफ द ईयर वेस्ट बंगाल इलेक्शन कवरेज बेस्ट पॉडकास्ट शो ऑफ द ईयर NDTV कंट्रोल ऑल डिफेंस बेस्ट प्राइम टाइम एंकर ऑफ द ईयर सैयद सुहेल बेस्ट फीमेल एंकर ऑफ द ईयर वसुधा वेणुगोपाल बेस्ट ऑन ग्राउंड
2: Hello and welcome to Chai Stop, the beloved NDTV show where editors, reporters get together every once in a while to kick around the big topic of

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: सबका राजा आकर मसाला।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: आर प्योर शाही पनीर मसाला डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
1: पीओके के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
2: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज पीओके।
1: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: इन्हीं बच्चों से पूछूंगा, झारखंड के बच्चे, एक बच्चे ने आज तक किसी के लिए एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है? झारखंड के एक भी
1: नहीं।
2: बीजेपी
0: का प्रोटेस्ट किसी नीट पेपर लीक के खिलाफ नहीं शुरू हुआ था। फैक्ट सबसे पहले सीजेपी, एक कमेंट आया सीजीआई का, उसके बाद ये आया। और जिस तरह से ये प्रोटेस्ट हुआ वो मैं आज तक कहता हूं कि वो इररिलेवेंट है, उसकी बात अभी नहीं करते। लेकिन बेसिक क्वेश्चन जो आपने पूछा, झारखंड का कोई भी बच्चा, क्या उनमें से किसी के ऊपर ये सवाल है कि वो कहां से आकर खड़े हो गए, कौन से स्टूडेंट हैं? वो वहीं के स्टूडेंट हैं। और उनमें से कोई भी, वो कह रहे हैं कि हेमंत सोरेन के खिलाफ भी मत बोलिए, हम उनको गाली नहीं दे सकते, वो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन कह रहे हैं, हम सिस्टम चेंज करना चाहते हैं। यहां क्या कह रहे थे, यहां नरेंद्र मोदी से लेकर पूरी सरकार को जो गालियां दी जा रही थी, मैं उसका जिक्र नहीं कर सकता हूं। यहां बाकायदा जिस तरह की फोर्सेज उसमें थी, और क्या अमृतसर पुलिस, वो तो आम आदमी
3: सर्कमस्टेंसेस अलग है। यहां पर गालियां भी वायलेंस नहीं हुआ, उसके बाद जब बच्चों पे लाठी चार्ज हुआ, पैलेट गन का यूज हुआ, उसके बाद गालियां निकली।
0: आईएसआई बैक टेरर मॉड्यूल।
3: ओके वेट, अभिजीत सिक्योरिटी, ओके वेट, अभिजीत रिस्पांस, देन दिस यंग लेडी, अभिजीत, देन दिस यंग लेडी।
4: यस, कैन आई जस्ट रीड आउट सौरभ दास's ट्वीट फ्रॉम द 13th ऑफ अक्टूबर 23, चीफ 23 Saurav Das, the Chief Justice of Pakistan, has said, "We have seen what they have done to their constitution. I don't know what they are going to decide Article 370. Let us see the independence of the judiciary there." Then he adds, it's a long quote, "The world is watching the Indian Supreme Court is an open, Article 370 is an open shut case, a grave assault on the Indian constitution."
3: What's your point?
4: The point is, this fellow doesn't sound anti-national to you.
2: Okay, I'd like to cover.
3: So you're saying
4: then that one second, I haven't finished. Arundhati Roy says that India's liberation of Goa is a colonialism. She says that India is a colonial oppressor in Kashmir. See, that doesn't sound anti-national to you.
2: May I come in?
4: So, I'm sorry, but if you associate with a certain kind of people, the fundamental thing is that anti-national tag will be applied.
2: Padmaja ji, I'd like to come in. See, honestly, you're not going to nitpick Saurabh Das or Arundhati Roy or any of these people and malign the protest. This was about the students. Students were literally hit with shock batons, pellet guns,
4: after
2: all of that.
4: They violated charges. Section
2: the world has seen
4: 144.
2: It. Allow me to speak. Please don't heckle. Allow me to speak. At this point, I'd like to mention to the BJP, jab zulm ke andhero ka zor badhta hai, जब जुल्म के अंधेरों का जोर बढ़ता है, तब हक की सदा और बुलंद होती है। हर सर झुकाने से इज्जत नहीं मिलती, हक की खातिर उठना ही हिम्मत होती है। दिस हिम्मत वॉज शोन बाय ऑल द स्टूडेंट्स, इंटायर इंडिया, इंटायर वर्ल्ड विटनेस इट। सीजेपी स्टूड फॉर द राइट ऑफ द स्टूडेंट्स, सीजेपी स्टूड फॉर व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल, विच इज राइट टू डिसेंट, right to protest. Now,
4: which if you're going to right to protest does not involve the right to riot. Announcing you're going to march in parliament and violate section 144 is not the right to protest. No, it was
2: Please maintain the decorum of the debate. Thank you.
4: They are right.
2: As far as the Jharkhand protest is concerned, the question should be asked by the BJP, because they are the ones sitting in power at the center. As far as Jharkhand government is concerned, they did not. They are ready to talk to the students. They are not going to, water cannon, lathi charge, bait and shock them. The students are in conversation with the ministers out there, with the government out there, number one. Number two, everybody supports the students in Jharkhand. It's not like the opposition is opposing the protest. It is not like the opposition is speaking against the Jharkhand students or even the...
3: Ma'am, you don't have to oppose a protest. Go on. You don't have to oppose a protest. You only have to show solidarity. Even in Jantar Mantar, it was never about opposing or agreeing with the protest. It was purely about showing solidarity.
0: One line, 30 seconds. बच्चों की नौकरियां बिक जा रही हैं, सरकार नौकरी बेच रही है, और इस तरह से
3: और वहां पर बहुत
0: कमाल की बात है, झारखंड और जंतर मंतर को उसका कोई कंपैरिजन है? जंतर मंतर पे आए हुए लोग अमेरिका से उड़ के आते हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं पता है, कुछ नहीं पता है।
2: माय क्वेश्चन टू द बीजेपी,
0: क्यूरेटेड मोमेंट,
2: माय क्वेश्चन टू द बीजेपी इज रियल डिसमिस।
5: Sir, I have a question from you. You just said that CJP protest was irrelevant. Like, jis tarah wo aage bada, it was irrelevant. Can you just list the facts? Ki wo irrelevant kaise tha? The students were compelled to come on streets that are supposed to study in classrooms.
2: Bravo.
5: How was it irrelevant?

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा, सबका राजा आजकल मसाला।
3: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service, Modo Elite.

0: TOK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is TOK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: to amend the bill, even as the opposition pushes for change or a joint parliamentary committee review. US Republican lawmaker raised concerns over the bill. India has firmly rejected the remark, saying that the internal legislative matter of the country is not the business of a Republican leader.
1: It is not, Christian-centric. It is actually, it will affect the Christian, it will affect the Muslims, it will affect even the Hindus. In fact, minority serves the majority in these types of areas, be it a college, school or a hospital. So all that it was pointed out. And another thing is, no hearing is provided under the rules. When the property is going to be vested, there should be at least a minimum hearing. Notice should be there. Nothing is there. Mere cancellation will automatically vest with the authority. That is so draconian in nature. It violates fundamental rights.
2: We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs, on which decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds.
0: Prime Minister Narendra Modi has delivered a message to students at the IIT Delhi convocation ceremony, urging them to stay curious, embrace change and have the courage to find solutions. Addressing the graduating students, the Prime Minister said that the youth will shape India's future and stressed that every change brings both challenges and opportunities. He called on the students to recognize the strength of India's young population, saying their energy and ambition can further strengthen the nation. Education Minister Pralhad Joshi, meanwhile, said that the Prime Minister's vision has made India's education ecosystem more learner-centric, research-driven and future-ready.
3: आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है। क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहां से निकल रहे हैं। आज कई स्टूडेंट्स, उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। जब जब बदलाव का दौर आता है, तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत

नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जी

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना।

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं।
1: Just few inches away is POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: Majority in these types of areas, be it a college, school or a hospital. So all that it was pointed out. And another thing is, no hearing is provided under the rules. Where the property is going to be vest, there should be at least a minimum hearing. Notice should be there. Nothing is there. Mere cancellation will automatically vest with the authority. That is so draconian nature. It violates fundamental rights.
1: We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs, on which decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds.
2: Prime Minister Narendra Modi has delivered a message to students at the IIT Delhi convocation ceremony, urging them to stay curious, embrace change and have the courage to find solutions. Addressing the graduating students, the Prime Minister said that the youth will shape India's future and stressed that every change brings both challenges and opportunities. He called on the students to recognize the strength of India's young population, saying their energy and ambition can further strengthen the nation. Education Minister Pralhad Joshi, meanwhile, said that the Prime Minister's vision has made India's education ecosystem more learner-centric, research-driven and future-ready.
3: आपके परिवार के लोग proud feel कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है. क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहां से निकल रहे हैं. आज कई स्टूडेंट्स, उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं. मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता. सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी. जब जब बदलाव का दौर आता है, तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं. दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा. जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे. और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है. आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है. यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है. इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है. साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है. देश का युवा जितना सशक्त होगा, उतना ही देश

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK.
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. इज इट फायर?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस इज अनबिलीवेबल, यू नो।
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: Minister Narendra Modi has delivered a message to students at the IIT Delhi convocation ceremony, urging them to stay curious, embrace change, and have the courage to find solutions. Addressing the graduating students, the Prime Minister said that the youth will shape India's future and stressed that every change brings both challenges and opportunities. He called on the students to recognize the strength of India's young population, saying their energy and ambition can further strengthen the nation. Education Minister Pralhad Joshi, meanwhile, said that the Prime Minister's vision has made India's education ecosystem more learner-centric, research-driven and future-ready.
1: आपके परिवार के लोग प्राउड फील कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है। क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहां से निकल रहे हैं। आज कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन एकाध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। जब जब बदलाव का दौर आता है, तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य, सुंदर, विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना सशक्त होगा, उतना ही देश सशक्त होगा।
0: दिस रिपोर्ट।
2: A bill passed in bipartisan unity, a sweeping economic hammer, now cleared by the United States Senate. In an 86-11 vote, the US Senate has passed the Lindsey Graham Sanctioning Russia Act. The legislation forces a drastic choice: stop buying Russian oil or face crushing American tariffs. The newly passed bill grants the US President discretionary powers to impose, delay, modify, or waive the tariffs under the bill's conditions, and creates the legal authority for the president to impose a tariff up to 100% on purchasers of Russian oil and gas. The legislation sanctions senior Russian military and government officials and targets maritime networks

0: concerns over the bill. India has firmly rejected the remark, saying that the internal legislative matter of the country is not the business of a Republican leader.
1: It is not, Christian centric. It is actually, it will affect the Christian, it will affect the Muslims, it will affect even the Hindus. In fact, minority serves the majority in these types of areas, be it a college, school or a hospital. So all that it was pointed out. And another thing is, no hearing is provided under the rules. Where the property is going to be waste, there should be at least a minimum hearing. Notice should be there. Nothing is there. Mere cancellation will automatically vest with the authority. That is so draconian nature. It violates fundamental rights.
2: We have seen the comments. Legislative matters concerning India are our internal affairs, on which decisions are taken by the parliament of our country. I would also like to point out that there are several nations, including the United States, which regulate the flow of foreign funds.
0: Prime Minister Narendra Modi has delivered a message to students at the IIT Delhi convocation ceremony, urging them to stay curious, embrace change and have the courage to find solutions. Addressing the graduating students, the Prime Minister said that the youth will shape India's future and stressed that every change brings both challenges and opportunities. He called on the students to recognize the strength of India's young population, saying their energy and ambition can further strengthen the nation. Education Minister Pralhad Joshi, meanwhile, said that the Prime Minister's vision has made India's education ecosystem more learner-centric, research-driven and future-ready.
3: आपके परिवार के लोग proud feel कर रहे हैं, वैसे ही मुझे भी आप सब पर गर्व है. क्योंकि ये आप सब केवल एक डिग्री नहीं ले रहे हैं, आप देश के लिए बहुत कुछ करने का सपने लेकर के यहां से निकल रहे हैं. आज कई स्टूडेंट्स, उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं. मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं. लेकिन एक आध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता. सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी. जब जब बदलाव का दौर आता है, तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं. दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा. जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे. और आपने यही तो IIT दिल्ली से सीखा है. आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है. यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है. इस मजबूत नींव पर

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना प्लीज। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है? बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: सी द सैक्रिफाइस।

0: कई स्टूडेंट्स उनको उनकी उपलब्धियों के लिए मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। लेकिन एकाध दो बेटियां होती तो जरा ज्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज्यादा होनी चाहिए थी। जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना सशक्त होगा उतना ही देश सशक्त होगा।
1: Cricketer Rishabh Pant has made a personal appeal to Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, saying that he wants to move his base back to the native state. Pant said he loves Uttarakhand and is trying to buy land to shift back home. He also sought Chief Minister's help in the land acquisition process. Responding to Pant, CM has called him the pride of Uttarakhand and said he had brought glory to Devabhoomi. Chief Minister also said he has instructed officials to provide full cooperation as per the rules of the state. India has hit back at China's repeated attempts to rename places in Arunachal Pradesh. The Survey of India has now identified 27 locations in the state using their official Indian names on its latest map. The locations include mountain passes, lakes, settlements and other geographical features. Among them are strategically significant areas such as Longzhou and Thangla. The move comes after Beijing has repeatedly issued its own names for places in Arunachal Pradesh. India has consistently rejected China's claims over the state, calling its renaming exercise baseless and fictional. Slipping into a very short break, news and updates continue here. Stay tuned, stay with us.

0: मेडल्स भी मिले हैं। मैं आप सभी को इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लेकिन एक आध दो बेटियाँ होती तो जरा ज़्यादा अच्छा होता। सॉरी, एक दो क्यों, ज़्यादा होनी चाहिए थी। जब जब बदलाव का दौर आता है तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना सशक्त होगा उतना ही देश सशक्त होगा।
1: Cricketer Rishabh Pant has made a personal appeal to Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, saying that he wants to move his base back to the native state. Pant said he loves Uttarakhand and is trying to buy land to shift back home. He also sought Chief Minister's help in the land acquisition process. Responding to Pant, CM has called him the pride of Uttarakhand and said he had brought glory to Devabhoomi. Chief Minister also said he has instructed officials to provide full cooperation as per the rules of the state. India has hit back at China's repeated attempts to rename places in Arunachal Pradesh. The Survey of India has now identified 27 locations in the state using their official Indian names on its latest map. The locations include mountain passes, lakes, settlements and other geographical features. Among them are strategically significant areas such as Longzhu and Thangla. The move comes after Beijing has repeatedly issued its own names for places in Arunachal Pradesh. India has consistently rejected China's claims over the state, calling its renaming exercise baseless and fictional. Slipping into a very short break, news and updates continue here. Stay tuned, stay with us.

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक।
1: बैठ सकते आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK.
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. इज इट फायर?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: तो हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। इज इट फायर?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया है।
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना। आप कहाँ से हैं?
2: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
2: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है?
2: कौन?
1: बच्चे हैं?
2: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
2: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
2: श्रीनगर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
3: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK.
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं. इज इट फायर?

0: ये लीजिए भाई, मैंने बनाया एक
1: बैठ सकता आपके साथ, खाइए ना।
2: आप कहाँ से हैं?
3: हरियाणा।
1: कब गए थे लास्ट वहाँ पे?
3: डेढ़ महीने पे।
1: आपकी फैमिली है और बच्चे हैं?
3: 3 साल।
1: मिस करते होंगे आप उन्हें ना?
3: बहुत।
1: फैमिली विजिट करने अलाउड है?
3: सिनेमा घर तक अलाउड।
1: एक हफ्ते की शूटिंग के बाद मुझे घर की याद आ जाती है।
0: See, the sacrifice is unbelievable, you know?
4: What seems settled for me is unfinished business. So I rewind, I pause, I reflect, I dig, until what's buried stands up to be counted. Breaking ground, not just headlines, the meaning behind them. This is Breaking Ground with me, Vedika Sood.

0: तब तब चुनौतियां भी आती है और नए अवसर भी पैदा होते हैं। दुनिया बदलेगी, टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, इंडस्ट्रीज बदलेगी, प्रोफेशंस भी बदलेंगे, लेकिन इन सब के बीच मेरी बात याद रखिएगा, जो सीखेगा वो जीतेगा। जो नए चैलेंजेस के नए सॉल्यूशंस खोजने का साहस रखेगा, चैलेंजेस उसके लिए चांसेस बन जाएंगे। और आपने यही तो आईआईटी दिल्ली से सीखा है। आज भारत इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस, टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, इंडस्ट्रियल सेल्फ रिलायंस, ऐसे हर सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने के लिए काम कर रहा है। यही विकसित भारत की मजबूत नींव का सबूत है। इस मजबूत नींव पर आपको एक भव्य सुंदर विकसित भारत का निर्माण करना है। साथियों, विकसित भारत की इस यात्रा में आपकी भूमिका बहुत बड़ी है। देश का युवा जितना सशक्त होगा उतना ही देश सशक्त होगा।
1: Cricketer Rishabh Pant has made a personal appeal to Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami, saying that he wants to move his base back to the native state. Pant said he loves Uttarakhand and is trying to buy land to shift back home. He also sought Chief Minister's help in the land acquisition process. Responding to Pant, CM has called him the pride of Uttarakhand and said he had brought glory to Devabhoomi. Chief Minister also said he has instructed officials to provide full cooperation as per the rules of the state. India has hit back at China's repeated attempts to rename places in Arunachal Pradesh. The Survey of India has now identified 27 locations in the state using their official Indian names on its latest map. The locations include mountain passes, lakes, settlements and other geographical features. Among them are strategically significant areas such as Longzhou and Thangla. The move comes after Beijing has repeatedly issued its own names for places in Arunachal Pradesh. India has consistently rejected China's claims over the state, calling its renaming exercise baseless and fictional. Slipping into a very short break, news and updates continue here. Stay tuned, stay with us.

0: POK के फायरिंग रेंज में खड़े हैं,
1: जस्ट फ्यू इंचेस अवे इज POK।
0: हो सकता है दुश्मन को पता हो कि सैफ अली खान यहाँ पर खड़े हैं। Is it fire?